0: गया है।
1: नहीं हम आप इसी वाले दिन में कौन माने उस टाइम
2: Mike 72.
3: On location, heading miles 4.3.
2: Copy your location with an ending of 4.3.